देवों में प्रथम पूज्य, देव समूह के नायक, प्रथम पति एक दंत लंबोदर विघ्ननाशक शिव पुत्र श्री वरद मूर्ति गणपति, कर्ता हरता धरता ही नहीं सब रूपों में विराजमान ब्रह्म है। प्रातः प्रथम स्मरणीय भगवान गणपति इंद्रादि देवेश्वरों के समूहों से भी वंदनीय, अनाथों के बंधु हैं। इनके युगल कपोल सिंदूर राशि से अनुरंजित हैं, जो उद्दंड विघ्नों का खंडन करने के लिए प्रचंड दंड स्वरूप हैं। भगवान गणपति अपने उपासकों के लिए अत्यंत मंगलकारी हैं। सांस्कारिक सत्कर्मों की ओर सहज प्रेरित करने वाले भगवान गजानन के वेदोक्त पुराणोक्त मंत्र, ध्यान, स्तोत्र एवं गायत्री का पाठ करने से निरंतर सत्कर्मों में तल्लीनता, सजगता एवं एकाग्रता प्राप्त होती है।

0: रेडियो नगर 90.4 FM आवाज सुनता।
1: वेलकम बैक। तर मित्रांनो, आज आहे 14 सप्टेंबर आणि आजचा दिवस हा आपला हिंदी दिन म्हणून साजरा केला जातो। तो हिंदी दिन की जानकारी जो है वो हिंदी में ही देनी चाहिए ना। तो भारत अपनी भाषाई विविधता के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहाँ अलग अलग राज्यों और क्षेत्रों में अनेक भाषाएं और बोलियां बोली जाती है, जो देश की सांस्कृतिक पहचान को और भी समृद्ध बनाती है। इन्हीं भाषाओं में हिंदी का विशेष स्थान है। हिंदी केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि साहित्य, संस्कृति, भावनाओं और सामाजिक जुड़ाव की एक महत्वपूर्ण भाषा भी है। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार और इसके संवैधानिक महत्व को याद करने के लिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस की तारीख का संबंध भारत के संविधान निर्माण के इतिहास से जुड़ा हुआ है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इसी ऐतिहासिक निर्णय की स्मृति में वर्ष 1953 से 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हालांकि हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा नहीं, बल्कि संविधान में संघ की राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। साल 2026 यानी जो साल चल रहा है, इसमें हिंदी दिवस सोमवार 14 सितंबर को मनाया जा रहा है। और इस वर्ष हिंदी दिवस समारोह और 6ठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन भी 14 यानी कि आज और कल 15 सितंबर को मुंबई में होने जा रहा है। तो दोस्तों, 14 सितंबर को देश भर के स्कूलों में, कॉलेज में, सरकारी संस्थानों में और अन्य संगठनों में हिंदी भाषा से जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस अवसर पर निबंध लेखन, भाषण, कविता पाठ, वाद विवाद यानी कि वाद विवाद प्रतियोगिता, हिंदी साहित्य से जुड़े कार्यक्रम और सांस्कृतिक आयोजन किए जाते हैं। हिंदी दिवस का उद्देश्य हिंदी के प्रयोग और प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने के साथ ही भारतीय भाषाओं की समृद्ध विरासत के प्रति लोगों को जागरूक करना भी है। हिंदी दिवस मनाने के लिए 14 सितंबर की तारीख इसलिए चुनी गई है क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। आज़ादी के बाद देश के संविधान निर्माण के दौरान भाषा का मुद्दा काफी महत्वपूर्ण था। भारत जैसे विशाल और बहुभाषी देश के लिए प्रशासन और सरकारी कार्यों में भाषा के उपयोग को लेकर व्यापक विचार विमर्श किया गया। इसके बाद हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा से संबंधित प्रावधान किया गया है। बाद में इस ऐतिहासिक निर्णय की स्मृति में 1953 से हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुई। हिंदी दिवस का इतिहास अगर देखेंगे तो भारत की आज़ादी के बाद संविधान निर्माण की प्रक्रिया से जुड़ा है। देश को स्वतंत्रता मिलने के बाद एक ऐसी व्यवस्था की जरूरत महसूस हुई जिसमें प्रशासनिक कामकाज और भाषाओं से संबंधित स्पष्ट प्रावधान किए जा सके।

तो संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और भाषा संबंधी प्रावधानों को संवैधानिक आधार मिला। इसके बाद हिंदी के प्रचार और प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1953 से 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। आज यह दिन हिंदी भाषा के साथ साथ भारत की समृद्ध भाषाई विरासत को याद करने का अवसर भी बन चुका है। भारत की भाषाई पहचान बेहद विविध है और संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। इसलिए हिंदी दिवस मनाने का अर्थ अन्य भारतीय भाषाओं के महत्व को कम करना नहीं, बल्कि भाषाई और सांस्कृतिक विरासत के सम्मान के साथ हिंदी के संवैधानिक महत्व को समझना भी है। हिंदी दिवस केवल एक भाषा को याद करने का दिन नहीं है, यह भारतीय साहित्य, संस्कृति और भाषाई विरासत से जुड़ने का अवसर है। हिंदी ने साहित्य, पत्रकारिता, सिनेमा, शिक्षा और जनसंचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज डिजिटल युग में हिंदी का स्वरूप भी तेजी से बदल रहा है। सोशल मीडिया, इंटरनेट, मोबाइल ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर हिंदी का प्रयोग लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में हिंदी दिवस भाषा को केवल अतीत की विरासत के रूप में नहीं, बल्कि भविष्य की तकनीक और संचार व्यवस्था के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में देखने का अवसर भी देता है। हिंदी के साथ साथ देश की सभी भारतीय भाषाओं का सम्मान और संरक्षण भी उतना ही जरूरी है। भारत की असली ताकत उसकी विविधता में है और अलग अलग भाषाएं इस विविधता को जीवंत बनाती है। तो हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस, इसमें फर्क है। अक्सर लोग हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस को एक ही मान लेते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग अवसर है। भारत में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस, और इसका उद्देश्य है वैश्विक स्तर पर हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देना, और इसलिए दोनों दिनों का उद्देश्य हिंदी के महत्व को बढ़ाना और बढ़ावा देना जरूर है। लेकिन इनकी तारीख और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अलग अलग है। तो आइए अब सुनते हैं एक बहुत ही प्यार भरा हिंदी गीत।

कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। हे घोषवाक्य लिहिला है संगीता अकोलकर यांनी। ऐकत रहा रेडिओ नगर 90.4 FM, आवाज तुमचा।

0: परम संध्य पुंज गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदना। जैन जी थैंक यू फॉर एवरीबडी। थैंक यू फॉर गिव मे सब्जेक्ट ब्रेन रॉट टू ब्रेन रीसेट। I don't know what you think, but my attitude is also always go to out of box. और मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझे सब्जेक्ट दिया जो मेरे लिए नया सब्जेक्ट सा लग रहा था, मुझे चैलेंजिंग भी लग रहा था। लेकिन जिस समय आपने जो सब्जेक्ट मुझे दिया उसके मैंने आपके जनरेशन से जानकारी लेने का प्रयास किया, तो आपको सुनकर खुशी होगी ब्रेन रॉट इज नॉट न्यू डिसीज। ब्रेन रॉट इज नॉट न्यू डिसीज, it is a old disease. Your dada, your grandparents, your mother and father, many times they feel brain rot. Tirthankar Mahavir, as a student ke liye unhone sabse pehle kaha tha ki brain rot se bahar nikal ja. जो ब्रेन रॉट में हो स्टूडेंट नहीं हो सकता है। कैसे लग रहा है आपको सुनकर के? कि मैं कह रहा हूं कि भगवान महावीर ने, तीर्थंकर महावीर ने स्टूडेंट के लिए सबसे पहले, स्टूडेंट के लिए, मंक के लिए, किसी भी पर्सन के लिए जिसको सक्सेस होना हो, जिसको सफल होना हो, जिसको डेवलप होना हो, उसके लिए पहले कोई बात कही थी उन्होंने, तो कहा था कि ब्रेन रॉट कभी नहीं होना चाहिए। उसके लिए आगम का शब्द है, आपको पसंद आएगा यदि मैं आपको स्क्रिप्चर का कोई वर्ड दो तो? डू यू लाइक? कुतूहल, कुतूहल, कुहल। एक होती क्यूरियोसिटी, एक होती क्यूरियोसिटी, एक होता है क्यूरियस नेचर, नए नए जानना चाहता है, उसको क्यूरियस कहते हैं। और एक होती है कुतूहल, कुतूहल यानी ब्रेन रॉट, जानना कुछ नहीं है लेकिन भटकना है केवल। कुतूहल, कुतूहल है ना। कुतूहल मतलब क्या है? जैसे आपने आपकी भाषा बोलने लग रहा हूं मैं कि बस वो 30 सेकंड कंटिन्यूस स्क्रोलिंग करते चले जाना। बस क्या समझ में आया, क्या पढ़ा, क्या देखा, उससे कोई लेना देना, बस देखता जाए। इसको स्क्रिप्चर में कहा गया कुतूहल, जो ज्ञान का दुश्मन, जो साधना का दुश्मन, जो पीस ऑफ माइंड का दुश्मन, जो डेवलपिंग का दुश्मन। जिसके पास ये है वो इन चारों का दुश्मन है। ज्ञान का भी दुश्मन है, पीस ऑफ माइंड का भी दुश्मन है, डेवलपिंग का भी दुश्मन है, और साधना का भी दुश्मन है। और उसके बड़े सुंदर उपाय परमात्मा ने दिए, और मुझे बहुत, मैं आपको बार बार थैंक यू कहूंगा, आप उसको स्वीकार करें कि आपने मुझे आपके दुनिया में एंट्री कराई है। और आपके दुनिया में एंट्री कर करके मैं बहुत खुश हूं, और खुश इसलिए हूं कि जो आप फील कर रहे हो वो तीर्थंकर महावीर ने पहले कह रखा था क्या ऐसा होता है, ऐसा होता है। मैं आज दिन तक जितना नहीं समझ पाया उतना आपके इस कारण समझ पाया, ब्रेन रॉट है ना। अब मैं पूछूं आप में से किन किन के ब्रेन रॉट होते हैं, या भी किन किन का ब्रेन रॉट है, आपका ब्रेन रॉट है ओके। जिनका जिनका ब्रेन रॉट है वो अपना थम्स करेंगे, और मैं उनको प्रैक्टिकल कराना चाहता हूँ आज यहीं पर, उनको ब्रेन रॉट से बाहर निकालने का प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ। तो वो मुझे मैं जो कराऊंगा वो आखिर में कराऊंगा, अभी तो उसको केवल एक्सप्लेन कर रहा हूं ना। इसको जो मंकी माइंड कहते हैं, अगम में क्या कहते हैं ब्रेन रॉट को, मंकी माइंड। एक होता मंक माइंड, एक होता है मंक माइंड, और एक होता है मंकी माइंड। आपने मंकी को देखा है ना, मंकी देखा है, नहीं देखा आपने मूवी में देखा कि रियल रियल लाइफ में देखा है? रियल लाइफ में अपने मंकी को देखा होगा तो मंकी जो है बस इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर जंप लगाते रहता है, इस फांद इस पेड़ से उस पेड़ से उस पेड़ से, कहीं वो स्टेबल बैठता ही नहीं हो, तो उसको मंकी माइंड कहते हैं। और एक होता है मंक माइंड। प्रवीण ऋषि का माइंड कौन सा है? मंक माइंड। मंक यानी संत, मंकी माइंड। तो ब्रेन रॉट को दूसरा शब्द दिया गया अगम में मंकी माइंड है ना, मंकी माइंड है ना। जो बस कोई मतलब नहीं रहता, मैं कई बार सोचता हूँ क्यों जा रहा हूं उधर, मैं जंगल में रहता था या रास्ते में विहार भी करते हैं तो देखता हूं इधर से उधर से, बस वो हिलाते हैं, क्यों हिलाना, कुछ लेना देना ही नहीं उसको। नो गोल, नो टारगेट, नो पर्पज, नो रीजन, नो अचीवमेंट, बस वो तीसरा एक शब्द है ब्रेन रॉट के लिए, आगम में जो शब्द गए ना ब्रेन रॉट के कैरेक्टर के लिए। आप क्या कहते हैं उसको पता नहीं मुझे, रैबिट, रैबिट यानी चूहा, माउस, माउस, माउस, चूहा। आपको पता है चूहे की आदत क्या होती है, वो कंटिन्यू कुतरते रहता है ना, वो खाली नहीं बैठ सकता है, कुछ न कुछ कुतरेगा, कुछ न कुछ कुतरते, कुतरना समझ ना, दांतों से कुछ न कुछ चबाते रहता है कंटिन्यू। मैं जंगल में था ना, आपको पता नहीं है ना एक बराबर, मैं जंगल में था और जंगल में जंगली चूहे थे, और जंगली चूहे थे और मैं मेरे ध्यान में बैठा हुआ था, और उन्होंने मेरे पास जो प्लास्टिक की बाल्टी थी ना, प्लास्टिक की बाल्टी, उसी को कुतर डाला, प्लास्टिक की बाल्टी को कुतर डाला, और प्लास्टिक की बाल्टी कुतर डाला, मैंने कहा क्या खाएगा उसमें, बस वो कुतर कुतर करके, कुतर कुतर करके। फिर मैंने रिसर्च किया क्या कारण है, तो पता चला किस कुतरने की आदत के कारण से माउस के जो है टूथ जो है दांत जो है बहुत फास्टली ग्रोइंग होते हैं, उसने वो कुतरा नहीं ना तो उसका जबड़ा ही फट जाएगा। तो दूसरा कहते हैं उन्होंने चूहा कहते हैं, चूहा माइंड, क्या माइंड है, चूहा माइंड है। तो जो जो ब्रेन रॉट वाले हैं उनके लिए मैंने जो स्क्रिप्चर के शब्द बता दिए हैं, कुतूहल, मंकी माइंड और माउस कैरेक्टर, बस उसको कुतरना रहता है। और शायद आप लोगों को अनुभव है नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन वो कहीं पर भी किसी भी दीवार में कैसे भी घुसखोरी करके बिल बना लेते थे, कुछ नहीं लेना देना, बस वो निकालना है, चलो इससे बाहर निकलना है नहीं। तो आप केवल दिमाग में मंक ब्रेन रॉट है कि आपके खाने में भी ब्रेन रॉट हो, प्रैक्टिकल शो करने जा रहा हूं। अब फास्ट खाते हो या स्लोली खाते हो, आपकी ईटिंग स्टाइल कैसी है, जिनका जिनका ब्रेन रॉट है, जिन्होंने थम्स किया हुआ है, उनमें से कोई एक स्वयं को अनम्यूट कर ले। कौन अनम्यूट करता है? प्रेरणा तो देखा था कि कौन कौन ब्रेन। हाँ यस, अनम्यूट कर ले स्वयं को, अनम्यूट कर ले। हाँ जी, हाँ। तुम्हारी ईटिंग हैबिट कैसी है? फटाफट खाती हो, आराम से खाती हो? आराम से खाती, यानी चबा कर खाती हो या शांति से खाती हो? शांति से खाना, चबा के खाना है ना। पहला सूत्र है, यदि ब्रेन रॉट से पहले बाहर निकलना है तो पहला सूत्र है कि चबा के खाना। और उसका एक जो प्रयोग मैंने बहुत जगह कराया है वो है काजू। जानते काजू क्या कहते? काजू को मैं समझ
1: शू
0: कैशो। तुम्हें तो हिंदी बोल रहा था काजू, है ना। आपका इंग्लिश सीखने में टाइम लगेगा, मुझे सीखूंगा मैं जरूर, है ना, सीखूंगा। तो काजू है ना, काजू ड्राई फ्रूट में काजू आता है सफेद सा, एक काजू मुंह में एक मिनट चबाना, बिल्कुल घड़ी लगा करके एक काजू को एक मिनट चबाना। ऐसे 11 काजू चबाकर खाने, सबसे पहले 11 मिनट में। यदि आपको काजू नहीं मिले तो मूंगफली का दाना, सिंगदाना जिसको हम महाराष्ट्र में कहते हैं, एक दाना लेना मुंह में, कितना? सिंगल पीस लेना, सिंगल पीस। बादाम नहीं कह रहा हूं, अलमार नहीं कह रहा हूं, काजू। और जब तक एक मिनट बिल्कुल घड़ी लगा करके 60 सेकंड तक एक काजू को चबाना। ऐसे कम से कम 11 काजू एक साथ चबाने, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। क्या होगा इससे? होगा क्या इससे? तीन काम होंगे इससे। पहले तीन काम होंगे, एक तो काजू में आपके ब्रेन के लिए टॉनिक होता है, ब्रेन टॉनिक के काजू। यदि आपने उसको चबा के खाया तो, और यदि आपने उसको चबा के नहीं खाया तो फैट बनता है, और चबा के खाया तो ब्रेन टॉनिक बनता है। पहली बात। सेकंड, जैसे जैसे आप चबाते जाओगे ना, आपका जो जॉ है उसकी एक्सरसाइज हो जाएगी, उसकी एक्सरसाइज हो जाएगी। और जैसे जैसे उसकी एक्सरसाइज हो जाएगी, वैसे वैसे आपका फ्री फ्रंटल जो कॉर्टेक्स है, यहां पर जो अपना ब्रेन में हिस्सा होता है, उसको फ्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, जिसका एक्टिवेशन होना, जो एक्टिव होना, ये आपके फोकस के लिए, डीप फोकस के लिए बहुत जरूरी होता है। और जो आप स्क्रोलिंग करते हैं ना, स्क्रोलिंग, उस स्क्रोलिंग के कारण से ये फ्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है डैमेज होता है। डोपामिन तैयार होता है इससे, स्क्रोलिंग से क्या तैयार होती है? डोपामिन। और डोपामिन के कारण से एंजाइटी आती है, एंसेस हो जाते हैं आप लोग। यदि एक काजू आपने एक मिनट तक चबाया, अभी रातों मत चबाना है, परिश्रम पर चल रहा है, नाइट में प्रयोग मत करना है इसका। अभी प्रदर्शन चल रहे हैं ना, रात को नहीं चबाना। सेकंड है आप हाउ यू ड्रिंक, आप पानी कैसे पीते हो। मैंने बहुत छोटी छोटी जो जैन आगम की, आपको ये टिप्स कहीं नहीं मिलेगा, इतना मैं गारंटी से कहता हूं। आप चाहे जितना गूगल पर सर्च कर लेना, आप चाहे जितने आपके जितने भी सोशल मीडिया उस पर सर्च कर लेना, जो ट्रीटमेंट मैं बता रहा हूं, जो रेमेडी मैं बता रहा हूं, वो रेमेडी आपको मिलेगी नहीं कहीं पर। और आप करके देखना, तुरंत इसका रिजल्ट मिलेगा आपको। आप पानी कैसे पीते हो, सेकंड पार्टिसिपेंट अनम्यूट करके बात करेगा, आप पानी कैसे पीते हो, हाउ यू ड्रिंक वाटर। हाँ जी,
1: तो मुंह में देती हूँ और गिट लेती हूँ डायरेक्ट।
0: डायरेक्ट गिट लेती हूँ,
1: कभी कभी फास्ट पीती हूँ और कभी कभी स्लो।
0: ऐसा अब कल से एक प्रयोग करोगी छोटा सा। पानी का एक छोटा सा लेना है ना, बस मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है एक 10 मिलीग्राम जितना पानी मुंह में लेना, और 3 नौकार मंत्र मन में गिनने। कितने? 3 नौकार मंत्र मन में गिनने, और फिर उसके बाद उसको नीचे उतारना। कर सकते हैं क्या? हाँ, करके देखना। जब भी पानी पीना हो, 3 नौकार मंत्र गिनने, मुंह में रखकर, पानी मुंह में रख करके, पानी मुंह में लेने के पहले नौकर मंत्र गिनो अलग, लेकिन पानी मुंह में रख करके 3 नौकर मंत्र गिनने, और 3 नौकर मंत्र गिनने के बाद ही पानी नीचे उतरने देना। इसके से क्या होगा, अपने जो टंग है ना, जुबान है ना, उस पर बहुत सारे ब्रेन के सेंटर है। उस ब्रेन के सेंटर को कूल करना है, तो जुबान को कूल करना है। और आपको पता चलेगा, यदि आपने कोल्ड वाटर भी मुंह में लिया ना, तो जैसे आप मुंह में रखोगे, तो 3 नौकार मंत्र गिनने तक उसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। उसका जो टेम्परेचर है, वो पूरा आपका टंग जो है चूस लेगी। वैसे ही काम करती है जुबान, कि जैसे यदि आपने पानी में गर्म कुछ डाल दिया, तो पानी क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, ठंडा पानी गर्म हो जाएगा। तो वैसे ही जैसे आप जुबान पर इस पानी को 3 नौकार मंत्र गिनने तक रखोगे, तो पहला काम होगा कि आपके ब्रेन के पास बी कुल का मैसेज आएगा, बी कुल का मैसेज आएगा, और बी कुल का मैसेज उसके पास पहुंच गया कि तुम्हारे ब्रेन रॉट में से तुम बाहर आना शुरू हो गए। इज इट पॉसिबल ना? 2 महीने में बताया आपको, 2 बताए, और तीसरा प्रयोग मैंने आपके साथ यही पर करना है। लेकिन ध्यान में रखना, क्यों अपने मेरे वापस एक बार धन्यवाद दे रहा हूं मैं आपको, कि अपने ब्रेन रॉट टू ब्रेन रिसेट का मुझे सब्जेक्ट देकर के मुझे एक नया डायमेंशन चिंतन के लिए, थिंकिंग के लिए, स्टडी के लिए दिया। इसलिए फिर अगेन मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं, बहुत अच्छा लगा मुझे, और मुझे इस बात की इतनी खुशी हो रही है कि जिसको मैं समझता था कि बड़ी नई समस्या है, लेकिन वो जब मैंने पढ़ा उसके विषय में, तो सारा की सारा स्क्रिप्चर में पहले गया हुआ है, केवल वो इंग्लिश वर्ड सामने आ गया ना, ब्रेन रॉट, तो वो थोड़ा सा मुझे समझने में तक, लेकिन ब्रेन रॉट जिसको आप कहते हैं कि उसको ये दिमाग काम करना बंद कर देता है ना, दिमाग काम करना बंद कर देता है, लगता है बस बहुत हो गया है ना, है ना। इसलिए अपने रिचुअल में जैन धर्म

विदाउट मीनिंग सीखना ये ब्रेन रॉट की ट्रीटमेंट है। बिना मीनिंग का सीखना, उसको बाय हार्ट करना, ये ब्रेन रॉट की ट्रीटमेंट है। मीनिंग पता नहीं है और उसको याद करना है। तो पूरा आपका दिमाग का सेटअप चेंज हो जाता है, पूरा फोकस आ जाता है उस पर। इसलिए पहले बच्चों को तोते जैसा रटाते थे, भूख रट्टा मार रट्टा मार। ये तुम्हारे न्यू साइंटिस्ट आ गए और उनका रट्टा नहीं मारना, अंडरस्टैंड करना। लेकिन पुरानी जो सिस्टम थी ना, वो रट्टा मारने की थी। अपने स्क्रिप्चर में गया है हमारे संतों के लिए 12 years, 12 साल तक, कितने साल तक, 12 साल तक बिना मीनिंग का याद करना, 12 साल तक बिना मीनिंग का याद करना। तो 12 साल तक बिना मीनिंग का याद करेगा तो दिमाग तो ब्रेन रॉट होने का तो विषय ही नहीं आएगा। मीनिंगलेस है ना, ध्यान में रखो, मीनिंगलेस रिचुअल करना एक 10 मिनट के लिए, मीनिंगलेस रिचुअल करना, कुछ भी रिचुअल कर सकते हैं आप लोगों से बोल सकते हो, आप नमो थुनम बोल सकते हो 10 मिनट के लिए, बड़े प्रेम से बोलना, विदाउट मीनिंग का बोलना, लेकिन प्रेम से बोलना। लवली सिंगर बनी, लवली सिंगर बनी है। आपने कभी किसी क्लासिकल म्यूजिशियन को देखा है क्या, सुना है क्या? भीमसेन जोशी, जाकिर हुसैन, इनको कभी देखा है आपने? वो लंबा चलाते रहते हैं ना, लंबा चलाते रहते हैं। आपको लगता है क्या कर रही है? वो ब्रेन रोड से बाहर निकलने के मेथड थे उनके। नौकर मंत्र बोलना ना आपको, नौकर मंत्र भी बोलना हो तो कैसे बोलना? एक नौकर मंत्र बोलने को 1 मिनट लगाना,

lembab, lembab, lembab, lembab, lembab, lembab, long. मैं प्रेरणा को कहूंगा कि वो आपको आरंभ धुन सिखा दे, या आरंभ धुन की वीडियो आपके साथ शेयर करें। YouTube पर है वो, तो वो भी जो है आपके ब्रेन रॉट के लिए ट्रीटमेंट है।

कर सकते क्योंकि मुझे पता है मैं आपको ब्रेन रॉट पर कितना ही भी अंडरस्टैंड करो ना, मोटिवेशन दो ना कि आप मोबाइल मत देखो, स्कूलिंग मत करो, तो आप मानने वाले नहीं हो, आई नो, है ना, आपको उसका एडिक्शन हो चुका है। अब मैंने जो प्रयोग आपको बताया है, यदि आपने 7 दिन प्रयोग किया ना, काजू चबाने का, एक रिचुअल करने का, पानी इस तरीके से पीने का, तो आप स्कूलिंग कर ही नहीं पाओगे। ये तीन ट्रीटमेंट, तीन प्रोसेस आपके ब्रेन को चेंज कर देंगे। और ब्रेन चेंज होगा कि आप कर नहीं सकते, तो आपको लेक्चर देने के बजाय, लेक्चर तो आपने बहुत सुन लिया, लेक्चर सुनते सुनते भी आपका ब्रेन रॉट हो चुका है,

मुझे कल आपके जैन जी के बच्चे बता रहे थे कि वो 1.5 घंटे का 1 घंटे का लेक्चर जो है, रिकॉर्डिंग लेक्चर, 30 मिनट में सुन लेते हैं। ऐसा आप भी करते हैं क्या?

शार्पन अलग बात है ना, शार्पन अलग बात है। और 30 मिनट में सुनना, वो मैंने आज मुझे पता चला, कल मुझे पता चला, वो प्रेरणा है ना, प्रेरणा। वो भी कई बार ऐसे करती है, उसको कोई लेक्चर सुनना हो तो उसका वो फास्ट का बटन दबा देती है। वो फास्ट का बटन दबा दिया कि बस वो अब कितना समझ में आता, मैंने तो समझ में नहीं आता फास्ट किया था। लेकिन जैसे जैसे आपने, मैंने 3 मेथड आपको बताई है, वो प्रैक्टिकल आप करोगे, मैं लेक्चर नहीं दे रहा हूं आपको, लेक्चर काम में आने वाला नहीं है। मैं आपको कितना ही कहूंगा कि तुम ये स्कूलिंग करना बंद करो, इससे ये होता है, उससे वो होता है, उससे वो होता है, तो आपको ये सब हम लोग को पता है। जैसे शराबी को कोई देना शराब का व्याख्यान, शराब से ये होता है, वो होता है, वो होता है, तो सब पता है मुझे, लेकिन फिर वो शराब छोड़ता नहीं है, एडिक्शन लग चुका है। आपको भी स्क्रोलिंग का क्या हो गया, एडिक्शन हो गया है, और एडिक्शन को एजुकेशन काम में नहीं आता है, उसको ट्रीटमेंट काम में आती है। तो 3 प्रयोग मैंने आपको दिए है ना, ये आपके ब्रेन रॉट को डिटॉक्स करेगा। क्या करेगा? डिटॉक्स करेगा। और एक छोटा सा सुझाव दे सकता हूं मैं आपको, यदि आप, ये 3 ट्रीटमेंट है, एक छोटा सा सुझाव है, 24 आवर्स में जब तुम जागे हुए रहते हो, सोए हुए तब की बात नहीं कर रहा हूं, कम से कम 3 घंटे का डिजिटल फास्टिंग करना। मोबाइल को देखूंगा नहीं, मोबाइल को हाथ लगाऊंगा नहीं, 3 घंटे के लिए डेली, 3 आवर्स। परिश्रम पूर्व चल रहा अभी ना, आपको पता है उस दिन अपनी मीटिंग चल रही थी, आपको याद है, तो मैंने कहा कि संवत्सरी के दिन अपन प्रतिगमन कराएंगे आपको, तो एक बेटी ने बहुत अच्छी बात बताई मुझे, मुझे बहुत खुशी हुई उस दिन कि हम तो संवत्सरी के दिन मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाते। आई एम हैप्पी, कि बहुत खुशी की बात है कि एक दिन तो कम से कम डिजिटल फास्टिंग तो हो गया, डिजिटल फास्टिंग तो हो गया। तो डेली 3 आवर्स, कंटिन्यू 3 आवर्स, डिटैच गजेट, डिटैच फ्रॉम गजेट, इज इट पॉसिबल? चलो बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको कुछ जानकारी देता हूं, यदि आपने ये लोग नहीं किया तो क्या होते जा रहा है, क्या होगा आगे। यदि जितने भी ब्रेन रॉड स्कैन्स कोलिंग के एडिक्ट है ना, उनका यदि आपने कल भी लिवर चेक किया तो आपको फैटी लिवर पक्का मिलेगा। और फैटी लिवर आगे जाकर के सोराइसिस में कन्वर्ट हो जाता है, लिवर सोराइसिस, नो ट्रीटमेंट। अभी आपको जानकारी होगी कि तपस्या करा तो अठाई कराता हूं, तो अठाई कराते समय मैंने उनको कहा था कि मोबाइल मत देखना, कि मोबाइल देखोगे तो लिवर को रेस्ट नहीं मिलेगी, और लिवर को रेस्ट नहीं मिली तो एसिडिटी होगी। अब जिन जिन लोगों ने वो मेरा फॉलो किया, उनको तब से में कोई तकलीफ नहीं हुई, और जिन्होंने टाइम पास के लिए मोबाइल देखते रहे हैं, उनको पित्त हो गए, एसिडिटी हो गई। कि आपको लगता है कि आप देख रहे हैं, है ना, लेकिन आपकी आंख का संबंध ब्रेन के साथ जितना है, उससे अधिक उसका संबंध लिवर के साथ है।

इसलिए हिंदी में जिसको पीलिया कहते हैं ज्वाइंडिस, इंग्लिश में जिसको ज्वाइंडिस कहते हैं, वो ज्वाइंडिस जिसको होता है उसकी आंखें पीली हो जाती है। यदि आपको आंखों को, पेट, लिवर को संभालना है तो आंखों को संभालो, और आंख को संभालना तो लिवर को संभालो। लिवर का आंसर आंख पर होता है, आंख का आंसर लिवर पर होता है। तो यदि डिजिटल एक 3 घंटे का भी आपने फास्टिंग किया 3 घंटे का, तो भी ब्रेन रॉट से आप बाहर निकल सकते हो। जितना आप स्क्रीन पर देखते जाओगे उतना आपका पेट बिगड़ेगा। मैं देखता हूं कई बच्चों को जिनको ओबेसिटी हो जाती है, वेट बहुत बढ़ जाता है। मैं उनको पूछता हूं, बोले उसकी मम्मी कहते मां साहब कोई फास्ट फूड नहीं खाता, कुछ नहीं खाता, कुछ नहीं खाता, एक फलका ही खाता है। तब मेरे समझ में आता है कि फलका तो एक खाता है लेकिन मोबाइल बहुत खाता है। और एक सुझाव दूं क्या मैं आपको, लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट के समय में, लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट के समय में नो मोबाइल, नो स्क्रीन। लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट के समय में मोबाइल को हाथ नहीं लगाना, देखना नहीं। मैंने कहा हाथ नहीं लगाना, और मुझे याद आया कि एक व्यक्ति ने पचकान लिए, मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। क्या पचकान लिए? मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। दोस्त बड़े खुश हो गए कि अब ये शराब छोड़ रहा है। और सेकंड एक देखा उन्होंने कि वो तो वाइन में, वाइन बियर बार में बैठ करके शराब पी रहा है, आराम से बड़े मस्ती से पी रहा है। लोगों ने पूछा तूने अरे कल पचकान लिया ना? बोले हाँ पचकान लिए मैंने, शराब को हाथ नहीं लगाना। मैं हाथ नहीं लगा रहा हूं बोले शराब को, मैं मुंह लगा रहा हूं शराब को। क्या वो ग्लास तो बोले हाथ से वो वेटर ने ला करके रखा है, मैं तो केवल मुंह लगा रहा हूं, उसको मुंह लगा रहा हूं। इसलिए मैंने मेरा वाक्य में चेंज किया, मैंने कहा कि मोबाइल को हाथ नहीं लगाना, आप लोग मोबाइल को हाथ नहीं लगाओगे लेकिन मोबाइल सामने रख लोगे, देखते चले जाओगे। तो मोबाइल को देखना भी नहीं, हाथ भी नहीं लगाना। लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट के समय में तो मुझे करके फीडबैक दोगे कैसा है। ये सारी जो भी मैंने आपको ट्रीटमेंट बताई है, मैंने कोई एक्सप्लेन नहीं किया ब्रेन रॉट करने से क्या क्या नुकसान होता है, माथा दुखता है, आंखें खराब होती है, पेट खराब होता है, पढ़ाई खराब होती है, है ना। वो मैंने कुछ लेक्चर नहीं दिया, वो सब मुझे पता है, सब तुमको पता है, मेरे से अधिक तुमको पता है, है ना। स्कूलिंग करने के कारण से अपना क्या क्या नुकसान होता है मेरे से ज्यादा तुमको पता है, इसलिए मैंने उसकी चर्चा की नहीं आपके साथ। मैंने कहा पेशेंट के साथ बीमारी की क्या चर्चा करें, दवा की चर्चा कर लेते हैं। एक प्रैक्टिकल प्रयोग करने की बात करी थी मैंने आखिरी में, सबके लिए ना, सबके लिए, है ना। ब्रेन रॉट में से आपको बाहर निकलने के लिए सभी ने सीधा बैठना है, सिट डाउन स्ट्रेट, स्ट्रेट, कोई सपोर्ट नहीं लेना है, दीवार का नहीं, चेयर का नहीं, कोई सपोर्ट नहीं लेना है, सीधा बैठना है, गर्दन सीधी, आंखें तो वो मेरी तरफ, पूरी तरह से मेरी तरफ, धीमे से आंखें बंद करोगे
धीमे से आंखें बंद करोगे, अपना राइट हैंड स्टमक पर नेवल पर रखोगे, अपना राइट हैंड स्टमक पर रखोगे, कीप ऑन दियर टच, अपना लेफ्ट हैंड हार्ट के पास, अपना लेफ्ट हैंड हार्ट के पास, अपना राइट हैंड पेट पर, गहरा सांस लेते हुए स्टमक को एक्सपांड करोगे, पेट को फुलाओगे, फिर चेस्ट को फुलाओगे, और बहुत स्लोली पहले चेस्ट को रिलैक्स करोगे और फिर पेट को रिलैक्स करोगे। आप जहां बैठे हो वहां के टाइम पीस है क्या आपके पास? आपके मोबाइल पर आप टाइम पर लगा सकते हो क्या? मोबाइल वॉच चालू कर सकते हो क्या? मोबाइल वॉच चालू करो और वापस इस प्रयोग को करना है। 10 सेकंड तक सांस लेना है, इनहेल करना है, 10 सेकंड इनहेल करना है, 10 सेकंड इनहेल करना है, घड़ी लगा कर गए, 10 सेकंड इनहेल करना है, 20 सेकंड एक्सहेल करना है, 10 सेकंड इनहेल, 20 सेकंड एक्सहेल करना है, कंटिन्यूस 10 सेकंड कंटिन्यूस सांस अंदर लेना है और 20 सेकंड श्वास को छोड़ते हुए टाइम लगाना है। लगाने या समझे टाइम वॉचर? तो मेरे पास भी टाइम वॉचर है, मैं मेरे घड़ी की तरफ देखकर कह सकता हूं को लेना शुरू करें श्वास, जब तक मैं कहता था श्वास लेते जाए। Now exhale, exhale, छोड़ते जाए श्वास को, छोड़े छोड़े छोड़े श्वास, छोड़े छोड़ते रहे, छोड़ते रहे, छोड़ते रहे।

0: ओके, टाइम हो गया है, 10 बज गई है, कुछ पूछना है किसी को, कुछ क्वेश्चन है किसी के? यस, कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, अनम्यूट करके के पूछिए, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ एंड आस्क।
1: मध्य मंदिर में भक्ति,
0: हाँ जी,
1: मेरा प्रश्न ये है कि अभी हम राति सोगन कर लेते हैं, रोज हमारा राति सोगन हो गया है, लेकिन हम गोली का आगा लेना भूल गए, हम 3 आरा का त्यागी लिए हुए हैं, तो पानी के साथ गोली ले सकते हैं या गोली का आगा रखना जरूरी है?
0: नहीं, गोली किसके लिए ले रहे हैं आप?
1: इन जनरल
0: नहीं, गोली लेनी ही नहीं रात को, गोली का आगा रखना भी नहीं, गोली लेनी भी नहीं, है ना? और यदि आप पानी सोने के पहले पी रहे हो तो वो भी सही नहीं है। पानी सोने के 3 घंटे पहले पानी पीना बंद करना चाहिए, क्योंकि आप पानी पीते हैं हम सो जाते हैं, तो उसके कारण से फिर नींद के लिए उठना नहीं होता है, और बीच में उठ जाएंगे तो नींद ब्रेक हो जाएगी, और ब्रेक हुई नींद गहरी नहीं होती है, इसलिए गोली तो लेने का सवाल ही नहीं, गोली का धागा रखना ही नहीं। ओके, हाँ जी,
1: सपोज प्रॉब्लम मतलब ऐसे टाइप की हो कि डॉक्टर बोले कि गोली लिए बिना काम नहीं चलेगा, वैसे टाइप की सिचुएशन में जैसे कि बुखार हो, सर्दी जुकाम बुखार वगैरह हुआ हो, गोली लेना?
0: बंधु, आपके जानकारी के लिए, सर्दी जुकाम और बुखार इन तीनों की जो मेडिसिन है वो उपवास है, फास्टिंग है। गोली के कारण से कोल्ड कभी ठीक नहीं होता है। अभी 2 दिन पहले ही यूके के डॉक्टर अभय चोपड़ा आए थे और उन्होंने हेल्थ एटीएम शुरू किया है, उसका उन्होंने डेमो दिया था, तो मैंने लोगों को सर मजाक में कहा कि आप इनको फोन करके कोल्ड के विषय मत पूछना कि कोल्ड के ट्रीटमेंट क्या है। उन्होंने कहा कि जरूर पूछना, मैंने थोड़ा सा नहीं हुआ, जब भी आप मुझे कोल्ड के लिए फोन करोगे तो मैं कहूंगा कोई गोली मत लो। कौन कह रहा है? डॉक्टर कह रहे हैं, और यूके के डॉक्टर कह रहे हैं कि कोल्ड के लिए कोई गोली नहीं लेना और बुखार के लिए कोई गोली नहीं लेना। बुखार ये बीमारी नहीं है, बीमारी इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन के कारण से बुखार आता है। केवल जिस समय हेवी बुखार होता है 102 डिग्री के आगे, तब उसको दवाई देते हैं, नॉर्मल बुखार में तो बुखार में दवा देने नहीं चाहिए। और आपको बता दूं कि अभी तो गुरुदेव के जन्मदिन पर यहाँ मोर देन 3,600 अठाइयां हुई है, उन अठाइयों में डायबिटीज वाले पेशेंट थे, ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट थे, थायराइड वाले पेशेंट थे, कोलाइटिस वाले पेशेंट थे, और इन्होंने सभी ने 8 दिन दवा नहीं खाई है, और शॉक न्यूज हो सकती है आपके लिए, और उनका थायराइड ठीक हो गया है, उनका कोलाइटिस ठीक हो गया है, जो इतने दिनों से दवा लेकर के ठीक नहीं हो रहा था। तो फास्टिंग करोगे तो स्वस्थ हो जाओगे। ओके, हाँ जी बोलो, क्या मानना चाहते हैं? हाँ जी
2: गुरुदेव, मुझे टेंशन की वजह से बहुत ज्यादा नींद आती है, पढ़ाई का बहुत ज्यादा ऐसा स्ट्रेस लगता है।
0: अच्छा, ये सारे प्रयोग जो मैंने बताए नहीं कर लेना, अभी आप, मैं आपके अभी 6-7 दिन आपके साथ हूं ना, रात को कल ये प्रयोग कर लेना जो मैंने आज बताया ना आपको, कल दिन में प्रयोग कर लेना। ब्रीदिंग का प्रयोग तो अभी भी कर सकते हैं आप, है ना, जो ब्रीदिंग का जो प्रयोग मैंने बताया वो अभी भी कर सकते हो। उसमें क्या हुआ पता है आपको, जिस तरीके से करा 10 सेकंड श्वास लेना है, 20 सेकंड छोड़ना है, तो 1 मिनट में आपके केवल 2 ही श्वास होंगे, और 1 मिनट में 2 ही श्वास लेने से आपने 5 मिनट भी कर लिया, और 5 मिनट में कल आपने 10 श्वास कर लिए, तो टेंशन आपको 5 मिनट के बाद बताना मुझे टेंशन कहाँ रहता है। ना करके देखना कल, ओके। अब इतने सारे क्वेश्चन लाइन में रहेंगे तो अभी 10 बज गई है ना, 10 o'clock हो चुके हैं, अपना टाइम 9 to 10 का है, तो आपके सारे क्वेश्चन जो है आप भेज दीजिए प्रेरणा के पास। जी
3: गुरुदेव,
0: बढ़िया, मैं भी आपको थैंक दे चुका, थैंक यू कह चुका हूँ कि मुझे आपने एक नया सब्जेक्ट दिया, मुझे थोड़ा ओपन किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद अगेन। और परिश्रम पर्व में सबने आप व्यवस्था किया ही होगा, है ना, 4 से 5 मैं ऑनलाइन अंतगढ़ सूत्र करता हूँ आपके लिए। परिश्रम पर्व का जो एक आगम है ना, जिसके आगम की आराधना करते हैं, आप सुबह प्रवचन में जा पाते होंगे तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं जा पाते होंगे तो दोपहर में 4 से 5 अंतगण सूत्र में ऑनलाइन आप जुड़ सकते हो। ओके, चदारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवल मंगलम, चदार लुगुत्तम अरियंता लुगुत्तम सिद्धा लुगुत्तम साहू लुगुत्तम केवली परमात्म, चदारी सनम बवज्जामी अरिहंते सनम बवज्जामी सिद्धे सनम बवज्जामी साहू सनम बवज्जामी केवली पन्नतम दम्भम सनम बवज्जामी, चार मंगल चार उत्तम चार शरण, दुख हरना सुख करना और न शरणा कोई, जो भवि प्राणी करे आराधन अक्षय अमर पदो।
4: श्रोते मित्र हो, परम पूज्य श्री प्रवीण ऋषिजी महाराज यांचं अहिल्यानगर इथं चातुर्मासानिमित्त समर्पण चातुर्मास प्रवचन मालिकेतल्या प्रवचनाचा संपादित अंश आत्ताच आपण ऐकलात।
5: एक आवाज लाखो भक्तांच्या श्रद्धेचा, एक नाव संकटावरती मात करण्याचं बळ देणारं, एक रूप ज्याच्या दर्शनानं मनाला समाधान मिळतं, आणि एकच जय घोष गणपती बाप्पा मोरया। आज आपल्या लाडक्या गणपती बाप्पाचं आगमन झालंय, सोबत घेऊन आलाय आनंद उत्साह आणि नव्या आशेची किरण। बाप्पाच्या कृपेनं तुमच्या आयुष्यातील विघ्न दूर होऊ देत, प्रत्येक स्वप्नाला नवी दिशा मिळू दे, आणि तुमच्या घरात सुख समाधान कायम नांदू दे। आपल्या सर्व स्नेहालयाच्या टीम कडून, रेडिओ नगर 90.4 FM संपूर्ण परिवाराकडून, गणेशोत्सवाच्या आपल्या सर्व लाडक्या श्रोत्यांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा।